और इस बात से कि तुम मुझे संसार करो, अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ। और अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ।

0: जब भी आपके दरवाजे पे कोई दस्तक हो तो छोटे बच्चों को दरवाजा खोलने से मना करें और खुद भी दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: Your new full-time community radio station, Inspire FM. I have wisdom.

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
3: आप लुटन से समात फरमा रहे हैं। Inspire FM 105.1.

0: शायरी और जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.

0: from the heart of Bedfordshire in Luton, you are listening to Inspire FM on 105.1 FM.
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोन सा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
0: From the heart of Bedfordshire in Luton, this is Inspire FM.
2: Making sure you get home safely. Khalil Mohammed on the Drive Time Show has got your back.
3: Wherever you find yourself, why not tune into Khalil Mohammed on the Drive Time Show here on Inspire 105.1 FM.
4: MashaAllah, what a beautiful, beautiful Nasheed. I love these Nasheed artists. They're absolutely doing a fantastic job for our youth and for all of us out there, inshallah, making us remember Allah subhanahu wa ta'ala and his mighty messenger, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Right, let's get back into more.
5: Hi, Asalaamu Alaikum, it's Scarlett. Be happy and keep listening to 105.1 FM.

0: मैंने कही थी, फेल तो तीन तरह के होते हैं,
1: या तो माजी में
0: या हाल में या
1: मुस्तकबिल में। फर्ज करो मैं कहूं मैं हम्द करता हूं, पहली बात ये कि किस किस सीने में बात हो रही है, माजी हाल और मुस्तकबिल, किस में बात की मैंने?
0: हाल में, यानी मैंने इस बात की कोई जमानत दी कि मैं माजी में भी कर रहा था,
1: और ना मैंने इस बात का जिक्र किया कि मैं मुस्तकबिल में करूंगा, ना वो मेरे बस की बात है।
0: और अगर आप माजी में पीछे जाते जाओ तो एक वक्त था जब मैं कुछ था ही नहीं,
1: लेकिन हम फिर भी थी,
0: और एक वक्त मुस्तकबिल में आने वाला है जब मैं कुछ हूं ही नहीं, लेकिन हम फिर भी होगी। तो इस बात की जरूरत है कि हम ऐसी हो जो ना माजी में फंसी हो, ना हाल में और ना मुस्तकबिल में। और अगर आपने कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना है जो वक्त की कैद में फंसा हुआ ना हो, तो वो फेल तो हो नहीं सकता, वो क्या होना है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उसमें अब वक्त की कैद नहीं रही।
0: दूसरी बात, जब फेल होता है ना
1: कोई काम तो उसका फाइल भी होता है, करने वाला।
0: मैंने कहा था मैं हम्द करता हूं, करने वाला कौन हुआ?
1: मैं, अगर मैं कहूं हम हम्द करते हैं तो करने वाले कौन हुए?
0: हम। अगर मैं कहूं तमाम मखलूक या तमाम कायनात हम्द करती है तो करने वाले कौन हुए?
1: तमाम कायनात।
0: लेकिन जब मैं कहूं हम्द अल्लाह के लिए है, जैसे कुरान ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द अल्लाह के लिए है, किसी करने वाले का जिक्र है?
1: ना,
0: हम्द अल्लाह के लिए में वक्त की कैद नहीं है और किसी करने वाले का जिक्र नहीं है, क्योंकि तमाम कायनात हो ना हो, हम्द हमेशा रहेगी। हम्द इस कायनात से पहले भी थी, हम्द इस कायनात के बाद भी होगी, ऐसी हम्द अल्लाह ताला की जो ना वक्त की कैद में हो, ना किसी के हम्द करने वाले की कैद में हो।
1: सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अगर कहा होता यहमदु जमीउल खलाइक अल्लाह, या यहमदुल्लाह जमीउल खलाइक, तमाम मखलूकात अल्लाह ताला की हम्द करते हैं या करते थे या करते रहेंगे, तो फिर हम एक तरह से कम हो जाती, उसका दारोमदार होता मखलूक पर। मखलूक है तो हम्द है, मखलूक नहीं तो हम नहीं। अगर मैं कहूं मैं हम्द करता हूं, मैं हूं तो हम्द है, मैं नहीं तो हम नहीं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है हम्द अल्लाह की है, मैं हूं ना हूं हम फिर भी है। इससे एक और बात भी सामने आती है, जो जो लोगों का अल्लाह ताला पर ईमान नहीं है ना, वो कहते हैं यार तुम क्या किस कैसे खुदा की इबादत करते हो, तुम्हें क्या मुसीबत है, इस खुदा को क्या जरूरत है कि तुम उसके सामने नमाजें पढ़ो, सजदे करो, क्या शौक है उसे अपनी तारीफ करवाने का? क्योंकि दुनिया में जिसको अपनी तारीफ करवाने का शौक है वो बहुत मुतकब्बिर होता है। तो ये किस किस्म का खुदा है तो उसको अपनी तारीफ करवाने का शौक है? उसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह काफी है, यानी जब कोई मखलूक थी भी नहीं तब भी उसकी हम्द थी। इसी तरह सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला ने ये बात समझा दी है, कहा है कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ذو الجلال والإكرام। देखें जलाल किस चीज को कहते हैं, जलाल कहते हैं जब किसी बादशाह की बादशाही को बयान किया जा रहा हो ना, वो जलाल होता है। और क्या अजीम शान आपकी सल्तनत है, या जो भी है तारीफ की जा रही है।
1: जलाल आजकल क्या होगा, कोई चैंपियनशिप जीत जाए, कोई मैच जीत जाए, जो जो फैंस कर रहे होते हैं ना, वो तजलील कर रहे थे, वो जलाल दिखा रहे होते हैं उसका।
0: अगर कोई अकेला एक आइलैंड में बंदा या एक मैदान में कोई बड़ा कारनामा कर ले, कोई इर्द गिर्द कोई तारीफ करने वाला नहीं हो,
1: तो उसकी जलाल हुई या नहीं हुई? जलाल करने के लिए आपको, जलाल होने के लिए आपको जलाल करने वाले चाहिए, कोई तारीफ करने वाला चाहिए, तब तारीफ होगी ना।
0: अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस दुनिया में, जब कुल्लू मन अलैहा फान, तमाम फानी हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तेरे रब का चेहरा जुल जलाल, जलाल वाला बाकी रहेगा। जलाल करने वाले, कोई तारीफ करने वाले हैं हो ना हो, वो बाकी रहेगा। ये है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आगे।
2: We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more